बालाजी महाराज को याद करते हैं और किस तरीके से बालाजी महाराज से क्या आदेश देते हैं और दुख की घड़ी में बालाजी महाराज को याद करते

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में सुबह के 7 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 7 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 8 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

0: ये शिव मंदिर है, कहते हैं वहां जाकर सच्चे दिल से जो भी मुराद मांगो वो पूरी हो जाती है। किसी दिन ले जाऊंगा वहां, भगवान से मांग लूंगा तुम्हें
1: सच।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 10 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

मुस्कुराना। आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 11 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 11 a.m. in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 12 नून इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 1 बज रहा है। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 1 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 2 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: बरसों बाद ढूंढने निकली हूं। ऐसा लगता है कि वो किसी औषधि की बात थी।
1: शायद उन दिनों की बात होगी जब ये इमारत अभी उजड़ी नहीं थी।
0: हाँ, पिछले किसी जन्म की बात ही तो लगती है।
1: एक काम करें, जब तक तुम यहां हो रोज घर पे खाने के लिए तो आया ही करोगी, खाने के बाद घूमने निकल आया करेंगे। कम से कम ये इमारत कुछ दिनों के लिए तो बस जाएगी। तुम्हारी शॉल कहाँ?
0: भूल गई। ना ना,
1: तुम नहीं बदलोगी।

0: सुनार जी, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना?

शौर्य, लैला मजनू, शिरी और फरहा, इनका सच्चा इश्क जमाने को अब तक है यार।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 3 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी शाम के 4 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 4 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी शाम के 5 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 5 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

आपने ट्यून किया है रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना और सुन रहे हैं स्टार 90s एंड न्यू स्पेशल शो आरजे अमन के साथ। कल शाम 6 बजे स्टार बॉलीवुड मिक्स मस्ती में सुनिए सभी तरह के गाने। आप मैसेज या वॉइस रिकॉर्डिंग फरमाइश कर सकते हैं सिर्फ रेडियो हॉटस्टार की ऐप से। तो अभी डाउनलोड कीजिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना गूगल प्ले स्टोर से और सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना, जो बना दे दीवाना, बजाते रहो दिल से।

हाय हेलो नमस्ते गुड इवनिंग सत श्री अकाल राधे राधे अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका रेडियो दोस्त अमन। आ चुका हूं लेकर आज का बेस्ट 90s एंड न्यू स्पेशल का ये प्यारा शो, और सभी दोस्तों का वेलकम करते हुए फिलहाल सुनिए मेरे पसंद के इस गाने को, और उम्मीद करते हैं मेरी पसंद आपको जरूर पसंद आई। तो लेट्स प्ले नाउ, एंजॉय द ट्रैक।

0: बिल्कुल, न जाने एक निगाह में क्या ले गया कोई, मेरी तो जिंदगी चुरा ले गया कोई। वैसे गाना आपको कैसा लगा भाई? मुझे तो ये गाना बहुत पसंद है, मैं अक्सर सुना करता हूँ। और भी बहुत सारे गाने हैं जो मेरे इन प्लेलिस्ट में शामिल हैं। वैसे बहुत से दोस्त जुड़ चुके हैं, बहुत सभी दोस्तों का मैं वेलकम करना चाहूंगा। सबसे पहले जुड़ने वाले हैं हमारे सरफराज भाई, यानी सरफ भाई साउथ अफ्रीका से, बहुत बहुत वेलकम है भाई जान। वालेकुम सलाम। सुनीता गोप जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं सुनीता गोप जी। और आज तो बहुत पहले आपने मैसेज कर दिया है। और अशोक देशमुख जी भी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं अशोक देशमुख जी भी आपका भी, और यानी कि जुड़ चुके हैं यहाँ पे। प्रियंका जी बहुत बहुत वेलकम है प्रियंका जी। और बीके पंत जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं बीके पंत जी। साथ ही साथ जुड़ने वाले हैं नाहिद अंसारी जी, वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और एमडी असलम राणा जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और ज्योति खटवाड़े जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं ज्योति खटवाड़े जी, वेलकम करते हैं आपका भी। और बता दूं कि सरोजीत शेट्टी जी जुड़ चुके हैं फाजिलका पंजाब से, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। राजेश कुमार जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं राजेश कुमार जी, ग्रेटर नोएडा हबीबपुर से। मीना इब्राहिम जी जुड़ चुके हैं यूएस से, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और अभी वहां तो मॉर्निंग हो रहा है, यहां तो इवनिंग हो रहा है ना, लेकिन वहां पे मॉर्निंग हो रहा है। और एमडी नाजिम जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। और साथ ही साथ मुबारक हुसैन जी, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और जाकिर खान जी जुड़ चुके हैं जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश से, बहुत बहुत वेलकम है आपका भी। और सर्वेश भगत जी क्या कहते हैं?
1: आरजे अमन सर जी सुसंध्या, नमस्कार, नमस्ते जी, हम भी जुड़े हुए हैं। और आपका ओपनिंग संग बहुत लाजवाब, थैंक यू इतना अच्छा गाना सुनाने के लिए, धन्यवाद।
0: बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। बाबूलाल अंजाना जी जुड़ चुके हैं, वेलकम है आपका भी बाबूलाल अंजाना जी। और अरुण मंडल जी जुड़ चुके हैं, अभी का भी वेलकम है। जितने भी दोस्त चोरी चोरी चुपके चुपके सुनते हैं, सभी का वेलकम वेलकम वेलकम। वैसे मैं प्रोग्राम का आगाज करता हूं, और लेकिन जो सबसे पहले मैं गाना प्ले करने वाला हूं, वो तो मैं वो तीन दोस्तों का गाना प्ले करने वाला हूं, यानी कि सर्वेश भगत जी, अशोक देशमुख जी, आत्माराम पाटिल जी। तो पहले सुनेंगे हम अशोक देशमुख जी को, ये क्या कहते हैं, उनके बाद सर्वेश भगत जी।
2: नमस्कार अमन सर।
0: नमस्कार।
2: मैं निम्बोरा महाराष्ट्र से अशोक देशमुख।
0: वेलकम जी।
2: आज का थीम है स्टार 90s एंड न्यू स्पेशल।
0: बिल्कुल।
2: तो मुझे एक गीत सुनना है, फिल्म का नाम है सैनिक, और गाने का बोल है कितनी हसरत है हमें तुमसे दिल लगाने की।
0: सही में।
2: ये गीत सबसे पहले मैं आपको और आपकी सुंदरता की मूरत को डेडिकेट करता हूँ, और जितने भी हॉटस्टार सुनने वाले श्रोता है उन सबको ये गीत सुनवा दीजिए सर, धन्यवाद।
0: बिल्कुल सुनवाएंगे। और सर्वेश भगत जी का भी सुन लेते हैं क्या कहते हैं।
1: आरजे अमन सर जी शुभ संध्या, नमस्कार, नमस्ते जी। आज हमारा फरमाइश का फिल्म है सैनिक, और गाने का बोल है कितनी हसरत है हमें तुमसे दिल लगाने की। हाउ द स्टार जो सबको दीवाना बना दे, सभी बड़े को प्रणाम, सभी छोटे को आशीर्वाद। हम सर्वेश भगत हजरतंदा जिला वैशाली बिहार से बोल रहे हैं। हमारा परिवार सतीश भगत, हेमंत भगत, प्रशिक स्वरूप भगत, आनंद शेखर, सोनी कुमारी, मुनी कुमारी, सूरज कुमार, मनोज जायसवाल, अशोक देशमुख भाई जी, आत्माराम पाटिल जी, आर जे अमन सर जी, सुंदरता की मूरत जी, आर जे रत्ना जी, आर जे वंशिका जी, आर जे एम एस परमार जी, और सभी भाई और सभी बहन और सभी लिसनर्स में सभी को सुना दीजिएगा। जयराम जी के
0: ओके, दोनों दोस्तों के। और हाँ, आत्माराम शामिल जी भी, आत्माराम पाटिल जी भी शामिल है।

0: बिल्कुल, बहुत हसरत है, बहुत हसरत है तुमसे दिल लगाने की, पास आने की, जिंदगी में लाने की, मतलब सब कुछ क्या क्या कहें भाई, सब कुछ समझ लीजिए। वैसे बहुत से दोस्तों के फीडबैक भी आने शुरू हो चुके हैं। मंगेश दसमुख जी लिखते हैं कि मैं भी जुड़ गया हूँ, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और संध्या पटेल जी जुड़ चुकी हैं, वेलकम है दीदी। लिखते हैं कि लाजवाब चॉइस, कितनी हसरत है हमें तुमसे दिल लगाने की, है क्या गाना है, मजा आ गया सुन के इस गाने को। एंड बी के पंजी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारी फरमाइश, मजा आ गया। और यहाँ पे लिखते हैं यानी कि प्रमोद कुमार जी के, ये तीनों दोस्तों का डिमांड बहुत लाजवाब लगा है, थैंक यू सो मच। आत्माराम जी लिखते हैं कि अमन खान जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरा गाना प्ले कर दिया। एंड नाहिद जी लिखते हैं कि आपका ओपनिंग गाना और सर्वेश जी का मिली जुली फरमाइश शानदार, मजा आ गया सुन के। और जाकिर खान लिखते हैं कि हसरत है सिर्फ तुम्हें पाने की, हाँ बिल्कुल हसरत है सिर्फ तुम्हें पाने की, और कोई ख्वाहिश नहीं है इस दीवाने की, और शिकवा मुझे तुमसे नहीं खुदा से है, क्या जरूरत है तुम्हें इतनी खूबसूरत बनाने की। बिल्कुल, और बहुत ही प्यारा है, सच में आपने बहुत प्यारा लिखा है। और बिट्टू कुमार लिखते हैं कि नमस्कार अमन सर जी, मैं भी जुड़ गया हूँ, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। बाबूलाल जी लिखते हैं कि तीनों दोस्तों की पसंद मुझे बहुत पसंद आई है। और मीना जी लिखते हैं वाह कितना खूबसूरत ये नगमा है, दिल खुश हो गया, आई लव दिस सॉन्ग। एंड ये फीडबैक,
1: धन्यवाद अमन सर, आपने हमारी फरमाइश का गीत सुनवाया, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारा गीत पसंद करके सभी दोस्तों ने फीडबैक दिए, उन सबको भी हम धन्यवाद देते हैं। मैं निम्बोरा महाराष्ट्र से अशोक देशमुख।
0: ओके जी, इसी बात का अगला जो मैं गाना प्ले करने वाला हूँ उसकी डिमांड आई हुई है मैं सर्वजीत सेठी जी के। सर्वजीत सेठी जी सुनना चाहते हैं फूल मांगू ना बाहर मांगू, मैं तो सनम सिर्फ तेरा ही प्यार मांगू। बिल्कुल, मुझे भी प्यार चाहिए बहुत सारा।

0: बिल्कुल फूल मांगू ना बहार मांगू, मैं तो सनम सनम सिर्फ तेरा प्यार मांगू, और चैन मांगू ना करार मांगू, मैं तो सनम सिर्फ तेरा प्यार मांगू। वैसे मेरे पास फीडबैक बहुत सारे आए हुए हैं, शामिल करता हूँ मैं पहले ये
1: आरजे अमर सर जी। नमस्कार
0: नमस्कार,
1: धन्यवाद, लाख लाख धन्यवाद हमारा और अशोक भाई जी और आत्माराम पाटिल तीनों भाई का गाना फरमाइश में शामिल कर दिए, थैंक यू सर।
0: वेलकम जी आपका भी। और यहाँ पे नंदनी माँ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है, लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना सुनने को मिल रहा है। जी माँ जी, रविंदर गोरखपुर जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है रविंदर गोरखपुरी जी। साथ ही साथ अशोक देशमुख जी लिखते हैं कि ये सरबजीत शेट्टी जी की फरमाइश खूबसूरत लाजवाब, मजा आ गया सुन के। बीके पंच लिखते हैं कि वाह बहुत ही प्यारी फरमाइश है, बहुत बहुत ही अच्छा लगा ये गाना। और राम कुमार मिस्त्री जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और ये लिख रहे हैं कि हमारे यहाँ वॉल्यूम बहुत ही कम आ रही है, सच में कहा यहाँ तो सब कुछ ओके है, वॉल्यूम भी ओके है, ऐसा तो कुछ नहीं है मेरे ख्याल से। और ये सत्येंद्र नाम है, राजभर जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है राजभर जी। और संध्या पटेल जी लिखते हैं बहुत ही सुंदर गाना है जी, बिल्कुल। और मीना जी लिखते हैं वाह कितनी प्यारी फरमाइश है, थैंक यू सो मच फॉर दिस सॉन्ग। प्रमोद कुमार लिखते हैं कि सरोजी जी की पसंद मुझे बहुत पसंद है, थैंक यू सो मच। एंड जागीर जी लिखते हैं कि ये टूटा हुआ फूल खुशबू देता है, लिखते हैं कि टूटा हुआ फूल खुशबू दे जाता है, बीता हुआ पल यादें दे जाता है, हर शख्स का अपना अंदाज होता है, और कोई जिंदगी में प्यार तो कोई प्यार में जिंदगी दे जाता है। है, है, है, क्या बात है, बहुत अच्छा बेहतरीन। ओके, इसी बात पर अगला जो ये नगमा है इसका डिमांड किया है हमारे एमडी नाजिम जी ने, और सभी दोस्तों को डेडिकेट करना चाहते हैं। तो भाई नाजिम जी, इंजॉय द ट्रैक, ये चांद कोई दीवाना है, बिल्कुल दीवाना हूँ यार।

ओके जी, कोई बात नहीं, फिलहाल शामिल करेंगे हम फीडबैक को। बहुत सारे फीडबैक आए हुए हैं सत्येंद्र यानी राजभर जी लिखते हैं कि मैं भी जुड़ गया हूँ दिल्ली से। अच्छा, बहुत बहुत वेलकम है राजभर जी आपका। और बिट्टू कुमार लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा ये नगमा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे नाजी लिखते हैं कि ये चांद कोई दीवाना है।

0: और अब जो गीत चल रहा है एम डी नाजिम जी का, सभी गीत शानदार लगे, तो सुनते रहे रेडियो हॉटस्टार जो सबको दीवाना बना रहे। मैं सरबजीत सेठी फाजिलका पंजाब से।
1: ओके जी, और यहाँ पे संध्या पटेल लिखती है कि वाह क्या सॉन्ग है, मजा आ गया। राम कुमार मिश्री लिखते हैं कि नमस्कार अमन जी, नमस्कार जी, वेलकम है आपका भी। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि ये चांद कोई दीवाना है, अमरी नाजिम जी का डिमांड बहुत ही शानदार लगा है। रविंद्र गोरखपुरी लिखते हैं कि आई लव दिस ट्रैक, मजा आ गया सुन के इस गाने को। आत्माराम जी लिखते हैं कि 90 के दशक का ये ब्यूटीफुल सॉन्ग सुनने को मिला है, बहुत अच्छा लगा है, थैंक यू सो मच। इसी बात पर अगला जो ये नगमा है वो जाकिर खान जी है। जाकिर खान जी सुनना चाहते हैं मेरी सांसों में समाए, बिल्कुल समा के रहूंगा, टेंशन मत लीजिए।

0: कभी। और असलम राणा जी लिखते हैं कि आपका ओपनिंग से और सर्वेश भगत जी का, अशोक देशमुख जी का, आत्मा राम जी का, सरबजीत शेट्टी जी का, एमडी नाजिम जी का, सभी के सॉन्ग जबरदस्त लगे हैं, थैंक यू सो मच। और बाबूलाल अंजाना लिखते हैं कि एमडी नाजिम जी का गाना मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। और मनीषा शर्मा जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है मनीषा शर्मा जी। और ओके कोई बात नहीं। और यहाँ पे ये फीडबैक,
1: आरजे अमन सर जी, जाकिर खान जी अपने गाने में शामिल किए हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जी।
0: ओके जी, वेलकम है आपका भी। और मीना जी लिखते हैं कि वाह क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, लाजवाब पसंद सुनकर मिला, मजा आ गया सुन के। नाजिम जी लिखते हैं कि यहाँ पे नाहिद जी लिखते हैं कि ये मेरे सांसों में समाए और तुम धड़कन बन के रहना, और मुझे सीने से लगाए तुम बस मेरे ही होकर रहना, और फासले अब ना हो हमारे दरमियान एकदम, और तुम मेरी रूह में उतर कर मेरी रूह बनकर रहना। वाह क्या बात है, अमेजिंग अमेजिंग। नंदलाल जी जुड़ चुके हैं गाजीपुर यूपी से, बहुत बहुत वेलकम करते हैं नंदलाल जी। बीके पंत जी जुड़ चुके हैं, और सॉरी ये लिखते हैं कि अमन जी बहुत बहुत बहुत ही सुपरहिट फरमाइश लगा है मुझे, मेरी सासों में समाया। और बिट्टू कुमार लिखते हैं कि बहुत ही शानदार गाना लगा मुझे, बहुत अच्छा लगा है। और अमीना खान जी जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत वेलकम है अमीना खान जी। और लिखते हैं कि शामिल हो गए हैं नाइटिस की महफिल में, बिल्कुल बहुत बहुत वेलकम है, आपका स्वागत है, आपका खुश आमदीद। राजेश कुमार लिखते हैं कि मस्त मस्त फरमाइश है और मजा आ रहा है सुनकर। बाबूलाल जी लिखते हैं कि जाकिर खान जी का जो चॉइस था मुझे बहुत ही पसंद आया, थैंक यू सो मच फॉर दिस सॉन्ग। अब बता देता हूँ अगले गाने की तरफ मैं चलता हूँ और लेकर आपको, और ये गाने की डिमांड हमारे पास किया है, मैं बता दूं कि जरा सा देखना पड़ेगा मुझे। आरिफ सिंधी जी, आरिफ सिंधी जी, एंजॉय द ट्रैक, कौन हो तुम भाई, मैं तो प्यार हूँ।

0: ट्यून किया है रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना और सुन रहे हैं स्टार 90s एंड न्यू स्पेशल शो आरजे अमन के साथ। कल शाम 6 बजे स्टार बॉलीवुड मिक्स मस्ती में सुनिए सभी तरह के गाने। आप मैसेज या वॉइस रिकॉर्डिंग फरमाइश कर सकते हैं सिर्फ रेडियो हॉटस्टार के ऐप से। तो अभी डाउनलोड कीजिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना गूगल प्ले स्टोर से और सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना, जो बना दे दीवाना, बजाते रहो दिल से।
1: वेलकम बैक। और दोस्तों, आरिफ सिंधी जी लिखते हैं कि बहुत बहुत शुक्रिया अमन जी, आपने मेरा गाना प्ले कर दिया, थैंक यू सो मच। और सभी दोस्तों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने मेरे गाने को पसंद करके फीडबैक दिया। बिल्कुल फीडबैक दिया है, आया हुआ है, ये सुनिए।
2: नमस्कार आरजे अमन सर जी।
1: नमस्कार,
2: गुड इवनिंग। इस लाइव कार्यक्रम में मैं भी जुड़ गया हूँ, आपका रेडियो दोस्त हीरामन खिराड़े वाशिम महाराष्ट्र से।
1: बहुत बहुत वेलकम है हीरामन खिराड़े जी। नाही जी लिखते हैं कि मैं हूँ प्यार और तुम मेरी चाहत का साज हो, मेरे दिल में छुपा हुआ कोई हसीन राज हो, और तुम्ही से शुरू और तुम्ही पे खत्म है जिंदगी, मैं धड़कन तुम्हारी और तुम मेरी आवाज हो। आए है, क्या बात है जी, बहुत ही प्यारा। और मीना जी लिखते हैं वाह क्या बात है, बहुत लाजवाब गाने सुनने को मिले, बहुत अच्छा लगा। जागीर खान लिखते हैं थैंक यू सो मच अमन जी मेरा डिमांड को प्ले करने के लिए, एंड दोस्तों का भी थैंक यू सो मच फीडबैक देने के लिए। और मैं बता दूं कि यहाँ पे नाजिम जी लिखते हैं सुपर सॉन्ग, एंड थैंक यू सो मच मेरा गाना भी प्ले करने के लिए। ज्योति जी लिखते हैं कि सभी गाने लाजवाब चल रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है सुन सुन के। और परवेश कुमार जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है आपका परवेश जी। बीके पंची लिखते हैं कि बेहतरीन पसंद है ये इन कौन हो तुम जो दिल में समाये जाते हो, दिल बिल्कुल मैं हूँ प्यार हूँ। इसी बात पर राधा कृष्ण गोप जी की जो डिमांड आई हुई है, मैं बता दूं कि मुझसे मोहब्बत का इजहार करती, काश कोई लड़की मुझे प्यार करती। एंजॉय द ट्रैक। और बीच बीच में यहाँ पे नेटवर्क इशू हो रहा है रेडियो हॉटस्टार पर।

0: बिल्कुल, काश काश काश कोई लड़की मुझे प्यार करती। वैसे फीडबैक आ चुके हैं मेरे पास बहुत सारे। पहला ये
1: जय अमन सर जी, राधा कृष्णा गोपची अपने गाने में शामिल किए, धन्यवाद देते हैं। सभी भाई यार, सभी बहन अपने अपने गाने में शामिल करते हैं, सभी को भी धन्यवाद देते हैं।
0: ओके जी, धन्यवाद आपका भी। और बीके पंची लिखते हैं कि मुझसे मोहब्बत का इजहार करती, काश कोई लड़की मुझे प्यार करती। और राम कुमार मिश्री लिखते हैं कि ये गाना मुझे बहुत पसंद है, मजा आ गया इस गाने को सुनकर। और हमारी नंदनी मालिक थे कि वेरी नाइस सॉन्ग, जी जी बिल्कुल वो तो है। और राजेश कुमार लिखते हैं कि वाह सुपर फरमाइश। साथ ही साथ यहाँ पे बाबूलाल लिखते हैं कि मुझसे मोहब्बत का इजहार करती, काश कोई लड़की मुझे प्यार करती। और आरिफ सिंह जी लिखते हैं कि बहुत ही लाजवाब ये डिमांड आई थी, थैंक यू सो मच इस गाने के लिए। एंड नाजिम जी लिखते हैं कि ऑल टाइम मेरा ब्लॉग पोस्टर सुपरहिट पसंद है, थैंक यू फॉर दिस सॉन्ग। एंड आगे बढ़ता हूँ मैं और अगले डिमांड की तरफ बढ़ता हूँ। और सच में ये डिमांड यानी कि किनका है जरा सा देखना पड़ेगा मुझे। और ये डिमांड हमारे ये नाम है उनका सुनील कुमार जी, बांका बिहार वाले जी। भाई एंजॉय द ट्रैक, लड़की बता ले बबुआ, कहीं मौका निकल ना जाए।

0: क्यों बात है?
1: और इसे जो खा ले भैया तो जन्म सफल हो जाए।
0: अच्छा जी, ये बात है,
1: इसलिए तो कहता हूँ।

ओके जी, फिलहाल फीडबैक भी आ चुका है, इसको शामिल करता हूँ। राधा कृष्ण गोप लिखते हैं, मैं भी जुड़ गया हूँ जी, वेलकम है आपका भी राधा कृष्ण गोप जी, और लिखते हैं बहुत बहुत धन्यवाद मेरा गाना प्ले करने के लिए। अकबर खान जी जुड़ चुके हैं, वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और मीना जी, वाह क्या गाना है, दिल खुश हो गया इस गाने को सुनने के बाद। बिट्टू कुमार लिखते हैं कि बहुत ही बेहतरीन गाना सुनने को मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, इस गाने को भी सुनकर। और इसी बात पर अगला जो डिमांड है उसे लेकर आए हुकुम चंद जांगड़ जी। हुकुम चंद जी, एंजॉय द ट्रैक, पंडित जी के पास गए हुए हैं बेचारे।

0: बहुत प्यारी है। अरे सब कुछ है यार, गोरे गाल भी है, लंबे बाल भी है।
1: सारा मोहल्ला बात करे मेरे हिरनी जैसी चाल।
0: हाय हाय क्या बात है।

अरे मिल जाएगा ना, टेंशन वाली कोनो बात नहीं है। बिल्कुल वैसे यहाँ पे विज्ञापन लेते हैं कि बहुत ही शानदार ये डिमांड थी, मजा आ गया सुनकर। और राधा कृष्ण को लिखते हैं कि बहुत ही शानदार पसंद, मजा आ गया इस गाने का। बिट्टू कुमार लिखते हैं कि बहुत ही लाजवाब गाना है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। बाबूलाल जी लिखते हैं कि ये पंडित जी वाला गाना मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। इसी बात पर अगला जो डिमांड मेरे पास आई हुई है वो राम कुमार जी का है। राम कुमार मिस्त्री जी, इंजॉय द ट्रैक। मुंडा गोरा रंग देख के दीवाना हो गया, बिल्कुल दीवाना होना पड़ेगा ना। अब गोरा रंग भला किसे नहीं भाता है कि नहीं।

वेलकम बैक। और मेरे पास बहुत सारे फीडबैक आए हुए हैं, लेकिन मैं फीडबैक बाद में शामिल करूंगा। अगला जो गाने की डिमांड आई है वो रश्मि नामदेव जी की है। रश्मि नामदेव जी सुनना चाहती है, गोरी है कलाइया पहना दो मुझे, हरी हरी चूड़ियां अपना बना ले मुझे बालमा। बिल्कुल भाई, हम तो जरूर चूड़ी पहनाएंगे, वो भी हरी हरी का, हम तो लाल लाल भी पहनाने वाले हैं। एंजॉय द ट्रैक। हम सब तरह की चूड़ी पहनाएंगे, टेंशन मत लीजिए।

अरे हरी नीली काली प्लीज सब ला देंगे यार, टेंशन मत लीजिए। फिलहाल फीडबैक शामिल करता हूँ मैं, और यहाँ पे सादे पटेल लिखते कि मजा आ गया, ऑसम सॉन्ग सुनने को मिला, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ओके जी, और रविंद्र गोरखपुरी जी लिखते हैं गजब का गीत है सर जी, दीवाना बना दिया बिल्कुल, और मजा आ गया सुनकर। ना ही जी लिखते हैं कि इश्क में डूबा हुआ मेरा हर एक लम्हा, तेरे ख्याल के बिना अब तो दिल भी है तन्हा, धड़कन भी अब मेरी नहीं वो तेरी बात करती है, और तू ही मेरी मंजिल तू ही मेरा रास्ता, क्या बात है। और बीके पंजी लिखते हैं कि सर जी ये गाना मुझे बहुत पसंद आई, और थैंक यू सो मच। और अमीना खान जी लिखते हैं कि लाल नहीं लाल लाल नहीं अभी निकली है ना कश्मीरी से, अच्छा मस्त, ओके ओके ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। और राधा किशन को भी लिखते हैं कि बहुत ही खूबसूरत फरमाइश है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं उनको। लाजिम जी लिखते हैं कि लाजवाब पसंद, ओके। और राम कुमार मिश्री लिखते हैं अमन जी बहुत बहुत सुपर हिट गाना प्ले करने के लिए मेरा धन्यवाद देते हैं, और साथ ही साथ संध्या पटेल लिखते हैं कि मजा आ गया इस गाने के लिए, ओके। इसी बात पर असलम राणा जी का गाना मैं प्ले कर रहा हूँ, असलम राणा जी हमेशा अनसुने गाने लेके आते हैं, और सुनवा दिया, इंजॉय कीजिए असलम राणा जी।

0: बिल्कुल दिखाती है और इसीलिए तो मस्त नजर आती है। बाबूलाल जी देखते हैं अमन जी का एकदम सुपरहिट चल रहा है जी। थैंक यू सो मच आपके। और इस बहुत ही लाजवाब प्रोग्राम चल रहा है, एक से बढ़कर एक गाने सुनने को मिल रहे हैं, सभी की डिमांड एक से बढ़कर एक है। और ये कल्चर मास्टर क्या कहते हैं, सुन लेते हैं इनके भी।
1: ये गाना सुन के बहुत मजा आ गया जी।
0: अच्छा जी,
1: नमस्कार अमन भाई।
0: नमस्कार जी, नमस्कार। और यहाँ पे सर्वेश भगत जी क्या कहते हैं, इनकी भी सुन लेते हैं।
2: जय अमन सर जी, एमडी असलम राणा जी अपने गाने में शामिल किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।
0: धन्यवाद जी आपका भी। और मोहन भाई लिखते हैं कि कार्यक्रम शानदार चल रहा है, थैंक यू सो मच। हुकुम चंद जांगर जी जुड़ चुके हैं कोटा राजस्थान से, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। नाहिद जी लिखते हैं कि ये घूंघट में चेहरा छुपाती भी है और नजरे यानी कि चुराती भी है, वो अपना सादगी से इस दिल को धड़काती भी है और न जाने कैसे कैसे जादू और इस महफिल में है तौबा मचाती भी है। मजा आ गया इस गाने को सुनकर, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बात में अगला जो गाना मैं प्ले करने वाला हूँ वो क्या नाम है उनका, एमडी फैज आलम जी, चिंता ता ता ता, इंजॉय द डे।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉट स्टार जो दीवाना बना दिया। और सुनवाते हैं ये फीडबैक।
1: हेलो आरजी अमन सर
0: जी,
1: मैं अनिल मेहता सूरत गुजरात से।
0: बोलिए।
1: वाह, बहुत ही लाजवाब गाने की फरमाइश चल रही है
0: चुका।
1: और आपके लाइव शो में मैं भी जुड़ गया हूँ। ओके थैंक यू।
0: ओके जी वेलकम जी आपका। और यहाँ पे बीके पंचायत के सर जी बेहतरीन फरमाइश जी, मजा आ गया सुन के इस गाने को। और जुड़ चुके मोहम्मद कौशल याजी जी, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। सुंदर नगर दिल्ली से जुड़े हैं असलम राणा जी, लेते हैं बहुत बहुत शुक्रिया अमन भाई जान, आपने मेरा गाना प्ले कर दिया। सभी दोस्तों का शुक्रिया फीडबैक देने के लिए। नंदलाल जी लिखते हैं कि बहुत ही लाजवाब गाना, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए भी। और बाबूलाल जी लिखते हैं कि एमडी असलम राणा जी और फैज जी के पसंद मुझे बहुत पसंद है, थैंक यू सो मच। एंड और नहीं जी लिखते हैं कि लाजवाब गाना एमडी फैज जी का, मजा आ गया सुन के। अमीना खान जी लिखते हैं ओह वहां पे ओके ओके जी। और यहाँ पे राधा कृष्ण को लिखते हैं कि ये गाना मुझे बहुत पसंद आया, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ओके जी, इसी बात पर अगला जो डिमांड है, आज के सभी गाने मजा आने वाला है। और ये गोविंदा खंडाड़े जी का एंजॉय द ट्रैक।

बिल्कुल बनाएंगे बनाएंगे बनाएंगे। और यहाँ पे बीके पंजी देखते हैं सर जी लाजवाब डिमांड, मजा आ गया सुनकर। और यहाँ बिट्टू को मालिक देंगे, बहुत ही बेहतरीन डिमांड है ये और बहुत अच्छा लग रहा है। ना ही चीज देखते हैं कि हर दुआ में मैंने सिर्फ तुम्हें ही मांगा है, और क्योंकि तुम एक दिन अपनी वो तकदीर मुझसे मिलाओगे। और लिखती है कि सजा कर मेरी सुनी दुनिया को अपनी बाहों में से, तुम्हें अपनी जिंदगी में हमें हसीन ख्वाब दिखाओगे और बनाओगे। वाह क्या बात है। और राजा कृष्ण को लिखते हैं बहुत ही सुपर फरमाइश है, मजा आ गया सुन के इस गाने को। और बाबूलाल जी लिखते हैं कि मुझे ये पसंद बहुत ही पसंद आई। इसी बात पर अगला जो डिमांड है वो यानी कि प्रियंका जी का है। और प्रियंका जी क्या कहना चाहती हैं, क्या सुनवाना चाहती हैं, सुनते हैं।

बिल्कुल आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू सो मच। वैसे भी मेरे पास बहुत सारे आए हुए हैं। विलास निकम सर जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है। नमस्ते सर जी। और साथ ही साथ अनिल मेहता लिखते हैं, वाह क्या लाजवाब डिमांड है, बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच। एंड हुकुम तंजी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारी डिमांड चल रही है, मजा आ रहा है सुन के। और अनिल कश्यप जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है अनिल कश्यप जी। और लिखते हैं कि भागम भाग के बाद मैं आ चुका हूँ जी, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और बीके पंच लिखते हैं कि मैं भी जुड़ के ये होटो पे बचते नाम है, मुझे गाना बहुत पसंद आया, थैंक यू सो मच। मोहम्मद कौशल नियाजी जी लिखते हैं कि वेरी वेरी वेरी नाइस सॉन्ग है। और आरिफ सिंह जी जी लिखते हैं कि ये काबिल तारीफ बहुत ही प्यारा गाना है, सुनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया इस गाने को। और नाही जी लिखते हैं कि ये सुबह शाम लिखते हैं कि सुबह की पहली किरण से लेकर डलती शाम है, मेरे इन होटों पर सजता सिर्फ तेरा नाम है, और दुनिया लाख चाहे मुझे अपने रंग से रंगवाना, पर मेरा वजूद तो पहले भी तेरा प्यार के नाम है। वाह क्या बात है। मीना जी लिखते हैं वाह क्या बात है, बहुत खूबसूरत नगमा है, थैंक यू सो मच। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि बहुत ही बेहतरीन फरमाइश जी, बिल्कुल इसी बात पर। अगला जो डिमांड है वो अमीना खान जी का है, और अमीना खान जी एंजॉय द ट्रैक आई लव यू।

0: बिल्कुल आई लव यू, और ये वाला गाना मुझे बहुत ही पसंद आया। वैसे यहाँ पे फीडबैक भी बहुत सारा आया हुआ। नाजिम जी लिखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम भाई जान, वालेकुम सलाम, बहुत बहुत वेलकम है आपका भी। और दिगंबर जी क्या कहते हैं सुनते हैं।
1: हेलो अमन सर जी,
0: जी जी जी,
1: सॉन्ग रिक्वेस्ट के माध्यम से एक सॉन्ग डाल सकते हैं क्या आप, सुना दो तो।
0: बिल्कुल आप डालिए, मैं कोशिश करूंगा। मैं प्रॉमिस नहीं करता हूँ, मैं कोशिश जरूर करता हूँ। ओके, और यहाँ पे जुड़ चुके हैं पिया जी, बहुत बहुत वेलकम है पिया जी आपका भी। और बीके पंची लिखते हैं कि बेहतरीन फरमाइश है, लाजवाब फरमाइश है, मजा आ गया सुन के इस डिमांड को। अनिल मेहता लिखते हैं कि वाह क्या गाना है, बहुत अच्छा लगा ये। बाबूलाल जी लिखते हैं कि अमीना जी के पसंद मुझे बहुत पसंद है, थैंक यू अमीना जी। अमीना जी लिखते हैं बहुत बहुत शुक्रिया आरजे अमन जी, ओके, और बहुत बहुत आपका वेलकम है। और राधा कृष्ण को लिखते हैं कि अमन जी हमारे यहाँ कभी नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है। जी बिल्कुल कोई बात नहीं, आज थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम मेरे यहाँ भी हो रहा है। नाजिम जी लिखते हैं कि लाजवाब सॉन्ग है और ये मजा के सुन के। और यहाँ पे प्रमोद कुमार लिखते हैं कि तुम सिर्फ मेरी मोहब्बत नहीं, मेरी जिंदगी का एक सुकून हो और खुदा की दुआ हो, और जिसके बिना मैं अधूरा हूँ, बिल्कुल। और यहाँ पे अनिल कश्यप जी लिखते हैं कि मस्त गाना लगा जी। इसी बात पर अगला जो डिमांड है वो बहुत ही प्यारा है, और ये डिमांड लेके आए हुए हैं हमारे MD जलील जी। ये तो बहुत बहुत वेलकम है MD जलील जी, इंजॉय कीजिए बिखरी जुल्फों को सजाने की।

0: बिखरी जुल्फों को सजाने की इजाजत दे दो। वाह, मैंने तो इजाजत दे दिया भाई, लेकिन गाना बहुत प्यारा लगा। थैंक यू सो मच। और फीडबैक भी बहुत सारे आए हुए हैं। जितेंद्र सिंह जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं जितेंद्र जी। और अमीना खान जी लिखती हैं कि जितने दोस्तों ने गाने पर फीडबैक दिया, सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि एमडी जलील जी की पसंद मुझे बहुत अच्छी लगी। थैंक यू जलील जी। और ये काय कहते हैं, सुनते हैं।
1: नमस्कार जी, इतने अच्छे गाने सुनाए, लिखे बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद आपका भी। और अनिल कश्यप जी लिखते हैं कि एमडी जलील जी आपकी चॉइस बहुत ही प्यारी लगी है। राधा कृष्ण गोप लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है जी, बिल्कुल। और बाबूलाल जी लिखते हैं कि एमडी जलील जी का गाना मुझे बहुत पसंद आया। थैंक यू सो मच। एमडी नाजिम जी लिखते हैं कि ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर सुपर हिट पसंद के लिए धन्यवाद देते हैं भाई। और नाहिद जी लिखते हैं कि ये पास आता हूँ सनम तो धड़कने बेकाबू हो जाती है, और पर लिखते हैं कि पर न जाने क्यों एक कदम में पीछे हटने को मजबूर हो जाते हैं, और चाहता हूँ कि तुम्हें टूटकर इस कदर की बयान न कर सकूं, मगर दूर चला जाता हूँ कि तुम हमसे खफा ना हो जाओ, बिल्कुल। और यहाँ पे बीके पंजी लिखते हैं कि सर जी बहुत ही शानदार पसंद है, मजा आ गया सुन के। एमडी फाइव जी लिखते हैं कि जलील जी के पसंद, वाह मजा आ गया, बहुत ही प्यारा है। और यहाँ पे अनिल कश्यप जी लिखते हैं कि तेरे जुल्फों की जंजीर मिल जाती तो अच्छा था, और तेरे लबों की वो लकीर मिल जाती तो अच्छा था जी। और नंदनी मालिक जी के बहुत ही प्यारी पसंद है। इसी बात पे आरजे

बिल्कुल, अगर हम कहें और वो मुस्कुरा दे, हाय क्या क्यामत हो जाएगी ना। वैसे बीके पंची लिखते हैं कि सर जी ये डिमांड आरजे सोनी जी की मुझे बहुत पसंद आई, थैंक यू सो मच। और राधा कृष्ण को लिखते हैं कि लाजवाब ये गाना मुझे सुनने को मिला, मजा आ गया सुन के। मीना जी लिखते हैं वाह बहुत खूबसूरत ये नगमा है, थैंक यू सो मच आरजे सोनी जी। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि यहाँ पे MD5 जी लिखते हैं वाह बहुत खूबसूरत ये नगमा, थैंक यू आरजे सोनी जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। और यहाँ पे नंदनी माँ लिखते हैं कि ये नए वर्जन का गाना मुझे बहुत प्यारा लगा, दोनों गाने बहुत अच्छे लगे हैं। अजय कुछ लिखते हैं कि दोनों गजल सुपर सुपर सुपर हिट लगे हैं। और मनीषा शर्मा जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना लगा है और मजा आ गया सुन के, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बाबूलाल जी लिखते हैं कि सोनी जी की पसंद बहुत ही पसंद आई, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। गोविंदा खंडारते जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है गोविंदा खंडारते जी। साथ ही साथ यहाँ पे प्रमोद कुमार लिखते हैं कि दोनों गजल बहुत ही बेहतरीन लगे हैं, थैंक यू सो मच आरजे सोनी जी। और जुड़ चुके हैं यहाँ पे शिल्पा बेन जी, बहुत बहुत वेलकम है, लिखते हैं कि बहुत प्यारी गजल है, जगजीत सिंह की गजल हमें बहुत पसंद है। अच्छा थैंक यू सो मच, बहुत बहुत वेलकम है शिल्पा बेन जी। नाहिद जी लिखते हैं कि लिखते हैं कि पास आते हैं सनम तो धड़कन बढ़ जाती है, दिल की बात लबो तक आते आते ठहर जाती है, अगर हम कहें और वो हौसले से मुस्कुरा दें तो इस दिल बेकरार दिल की बेकरारी वो मिटा दे। बिल्कुल, वैसे अगला जो यानी कि नगमा है वो हमारे नंदलाल यादव जी का है और ये गाना एंजॉय कीजिए नंदलाल यादव जी सभी दोस्तों के साथ।

0: और अनिल कश्यप जी लिखते हैं कि आपने आपने भेजा ही नहीं है, आपका फीडबैक कहाँ आया हुआ है, जरा देखा आप अपना चेक कीजिए, जहाँ से भेजते हैं वहाँ पे सब शो करता है, आपने कोई फीडबैक नहीं भेजा है। फीडबैक रिकॉर्डिंग करते हैं तो रिकॉर्डिंग के बाद स्टॉप करना होता है।
1: सोनी जी का और नंदलाल यादव जी का गजल सुन के बहुत मजा आया जी। नमस्कार।
0: नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, थैंक यू सो मच। और यहाँ मीरा जी लिखते हैं वाह ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। और बाबूलाल जी लिखते हैं कि दोनों दोस्तों की पसंद बहुत अच्छी लगी है, थैंक यू सो मच। और प्रमोद कुमार लिखते हैं नंदलाल जी की पसंद मुझे बहुत पसंद आई है, थैंक यू सो मच। इसी बात पर अगला जो डिमांड है वो मैं प्ले करने वाला हूँ राजेश कुमार जी का। राजेश कुमार जी ये सुनना चाहते हैं जब तुम आ जाते हो सामने, महाराजा का लाजवाब नगमा। एंजॉय द ट्रैक।

और दिगंबर जी आपने तो गाना भेजा है, लेकिन वो कौन सा गाना है? वो गाने का नाम उसमें नहीं ले ली, आपने लिखा है कि सिर्फ मैं एक गाना सुनना चाहता हूँ, तो कौन सा गाना है अंदाजी? कौन सा गाना प्ले करूँगा बताइएगा।

यहाँ पे साहिब हुसैन जी जुड़ चुके हैं, लिखते हैं कि सुना है कि वो मुस्कुराने लगे, मुझे गाना बेस्ट लगा है, इसलिए तो कहते हैं कि वो दिल ही क्या जो मिलने की दुआ ना करे, और बहुत ही अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। और यहाँ पे लिखते हैं, लिखे कमलेश गुप्ता जी, बहुत बहुत वेलकम है आपका, लिखते हैं कि प्रोग्राम तो मस्त चल रहा है, थैंक यू सो मच, सभी गाने शानदार प्ले हो रहे हैं। बाबूलाल जी लिखते हैं कि राजेश कुमार जी की पसंद मुझे बहुत पसंद आई है, और बीके पंजी लिखते हैं कि सर जी ये गाना मुझे बहुत पसंद है, थैंक यू सो मच नंदलाल यादव जी का। और नंदलाल लिखते हैं कि सभी गाने बहुत ही प्यारे प्यारे हैं, और नंदलाल जी लिखते हैं कि भाई राजेश कुमार जी का गाना मुझे बहुत पसंद है, धन्यवाद देते हैं उनको इस गाने के लिए। और नाजिन जी लिखते हैं कि सुपर हिट पसंद है, थैंक यू सो मच। एंड अनिल कश्यप जी लिखते हैं कि ओके मैं कोशिश करूंगा, ठीक है कोई बात नहीं। और यहाँ पे यानी कि शिल्पा बेंच लिखते हैं कि जी आप वहाँ पे सॉन्ग रिक्वेस्ट के माध्यम से गाना भेज सकते हैं, सॉन्ग रिक्वेस्ट कहाँ मिलेगा मैं आपको बताता हूँ, सबसे नीचे जाइएगा जहाँ पे मैसेज कर रही है उसी के बगल में होगा मोर लिखा होगा, MORE मोर लिखा होगा, मोर पर क्लिक कीजिएगा तो आएगा वहाँ सबसे पहला ऑप्शन होगा सॉन्ग रिक्वेस्ट, सॉन्ग रिक्वेस्ट में आप अपना गाने की डिमांड कर सकती हैं, मैं कोशिश करूंगा जरूर गाने को प्ले करने के लिए। और राधा कृष्ण को भी देखिए सुनकर मजा आ गया, थैंक यू सो मच। इसी बात पे अगला जो डिमांड आई हुई है वो डिम्पी जी का डिमांड है, और डिम्पी जी ये सुनना चाहती है गहरा हुआ, जो मुझे बेहद पसंद है, एंजॉय कीजिए गहरा हुआ डिम्पी जी।

हाय क्या पसंद है, थैंक यू सो मच, ये गाना मुझे बहुत पसंद है, इसलिए तो आज मैंने स्टेटस लगाया है। और बहुत प्यारी याद है इस गाने के साथ।

वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉट स्टार जो आपको दीवाना बना दिया। और अभिषेक तिवारी जी लिखते हैं ब्यूटीफुल सॉन्ग, मजा आ गया, मुझे बहुत पसंद है, थैंक यू सो मच। और बाबूलाल जी लिखते हैं कि डिम्पी जी की पसंद मुझे बहुत पसंद आई, थैंक यू डिम्पी जी। एंड साहिब हुसैन जी लिखते हैं कि ठहरे हुए पान, अच्छा ओके कोई बात नहीं, कोशिश करूंगा मैं। और अनिल कश्यप जी लिखते हैं कि सुपर चॉइस है, बिल्कुल सुपर चॉइस तो है, मानना पड़ेगा। राधा कृष्ण गोप लिखते हैं कि दिल खुश कर दिया इस गाने ने, थैंक यू सो मच डिम्पी जी। एंड सरबजीत जी लिखते हैं कि कार्यक्रम शानदार चल रहा था, सभी गाने से बढ़कर एक प्ले हो रहे हैं। अमीना खान जी लिखते हैं कि बहुत ही शानदार, ओके जी। और अगला इसी बात पर अगला गाना जो मैं प्ले करने वाला हूँ वो इनकी पसंद है, मैं बताना चाहूंगा, वो है यानी कि मीना इब्राहिम जी की। तो मीना इब्राहिम जी मैं आपकी पसंद को प्ले करूंगा थोड़ा सा इस इनके ब्रेक के बाद। यह एक काम कीजिए, अभी गाना प्ले कर देता हूँ, इंजॉय द ट्रैक मीना इब्राहिम जी।

चांद तो क्या, चांदनी का मुंह नहीं देखा, तुम्हारे वास्ते मैंने खुशी का मुंह नहीं देखा। तुम्हारी आरजू की प्यास में है कुछ मिठास इतनी, मैं प्यासी ही रही लेकिन नदी का मुंह नहीं देखा। तुम्हारे प्यार में कुछ इस तरह पागल हुई जानम, तुम्हारे प्यार में कुछ इस तरह पागल हुई जानम, तुम्हें देखा है जब से फिर किसी का मुंह नहीं देखा।

0: बिल्कुल, और
1: की हद से गुजर जाऊंगी, आग होगी जिधर मैं उधर जाऊंगी। मैंने तुमसे मोहब्बत का वादा किया, ये न सोचो कि दुनिया से डर जाऊंगी।
0: वाह क्या बात है।
1: बेवफाई का तूफान आने तो दो, बेवफाई का तूफान आने तो दो, पंखड़ी की तरह मैं बिखर जाऊंगी।
0: हाय हाय हाय।

0: वेलकम बैक। और मेरे पास बहुत सारे फीडबैक आए हुए, शामिल करता हूँ मैं। और कमलेश गुप्ता जी लिखते हैं कि वाह गहरा हुआ गाना, मुझे बहुत मस्त लगा है, थैंक यू सो मच। और अनिल कश्यप जी लिखते हैं वाह क्या बात है, सुपर हिट पसंद सुनने को मिल रहा है, बहुत मजा आ रहा है। मीना जी लिखते हैं थैंक यू सो मच, मेरे रिक्वेस्ट को आपने प्ले कर दिया, थैंक यू सो मच आपका भी। और बीके पंजी लिखते हैं कि वाह मौसम की तरह तुम तो बदलते ना जाओगे, बहुत ही लाजवाब गाना सुनने को मिला है, मजा आ गया। दत्तक्रम जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है दत्तक्रम जी। और सर्वेश भगत जी क्या कहते हैं,
1: अरजय अमा सर जी, मीना इब्राहिम जी अपने गाने में शामिल किए, धन्यवाद देते हैं। और सभी भाई और सभी बहन भी अपने अपने गाने में शामिल करते हैं, सभी को भी धन्यवाद देते हैं जी।
0: ओके जी, धन्यवाद देते हैं आपको भी। और यहाँ पे जुट क्या नाम है इनका, शिल्पा बेन जी लिखती हैं कि आज के प्रोग्राम में जितने भी गाने बज रहे हैं बहुत अच्छे अच्छे लग रहे हैं, और 90s के दौर के जी, अभी तो 90s स्पेशली चल रहा है। परवेश कुमार लिखते हैं कि बहुत खूबसूरत ये नगमा था, मजा आ गया सुन के। और बाबूलाल जी लिखते हैं कि मीना इब्राहिम जी की पसंद मुझे बहुत पसंद है, थैंक यू सो मच। और साहिब हुसैन जी लिखते हैं कि अमन सर जी अभी मौसम की तरह मत बदल जाएगा, नहीं बदलेंगे भाई। ओके जी। और यहाँ पे राकेश शर्मा जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम, लिखते हैं कि लाजवाब गाना सुनने को मिल रहा है, मजा आ रहा है। नाही जी लिखते हैं कि वंडरफुल फरमाइश, मजा आ गया, थैंक यू सो मच मीना जी। एंड अनिल कश्यप जी लिखते हैं कि मौसम बदल कर अमन सर को रोज रात में लेट करवा देता है। हाँ सही कहे, वैसे अगली फरमाइश जो है वो शिल्पा बेन जी का ही है, धीरे धीरे आप मेरे दिल के मेहमान हो गए, बिल्कुल एंजॉय द ट्रैक।

बिल्कुल धीरे धीरे आप मेरे दिल के मेहमान हो गए हैं, क्योंकि हम आशिक ना थे और आशिक हो गए। इसी बात पर अगला जो मैं गाना प्ले करने वाला हूँ वो डिमांड आई है हमारे दिगंबर जी की, आशिक ना थे हम लेकिन आशिक हो गए। जी क्या करें, आपने दीवाना बना दिया ना, इसलिए

बिल्कुल आशिक ना थे हम, लेकिन आपको देखकर हम तो आशिक हो गए, दीवाने हो गए, सब कुछ हो गए यार, पागल भी हो गए हैं। क्या करूं, आपके बिना दिल मेरा लगता ही नहीं है। वैसे मेरे पास फीडबैक भी बहुत सारे आ चुके हैं, और यहाँ पे राकेश शर्मा लिखते हैं कि लाजवाब गाना सुनने को मिल रहा है, बहुत बहुत बहुत मजा आ रहा है। और मीना जी लिखते हैं वाह क्या बात है, क्या पसंद है, क्या पसंद है, मजा आ गया इस गाने को सुनकर। और कमलेश गुप्ता जी लिखते हैं कि धीरे धीरे आप मेरे दिल के मेहमान हो गए, बहुत ही अच्छा गाना लगा है और बहुत बहुत ही प्यारा लगा है। ओके जी, और यहाँ पे शिल्पा बहन जी लिखते हैं कि थैंक यू सो मच मेरा गाना बजाने के लिए, और डेडिकेट दिस इस इनके प्रोग्राम के लिए था, थैंक यू सो मच। बाबूलाल जी लिखते हैं कि धीरे धीरे आप मेरे दिल के मेहमान हो गए, बहुत ही प्यारी पसंद है शिल्पा बहन जी का। एंड कपूर चंद जी यहाँ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है कपूर चंद जी। नीलेश मीरोकार जी लिखते हैं कि सुपर हिट सॉन्ग चल रहा है। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि दिगंबर जी की पसंद मुझे बहुत लाजवाब लगा है, धन्यवाद। और अनिल मेहता लिखते हैं कि अर्जमन जी क्या बात है, लाजवाब फरमाइश सुनने को मिल रही, मजा आ रहा है सुन के। इसी बात पे अगली जो डिमांड है वो अरुण मंडल जी का है। अरुण मंडल जी सुनना चाहते हैं बहुत ही प्यारा नगमा, और ये नगमा मुझे समझे बहुत पसंद है कि चांद सितारों में है मेरा महबूब। जी बिल्कुल, मेरा महबूब बहुत ही प्यारा है, बोले तो सुंदरता की मूरत।

0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि चांद सितारों में है मेरा महबूब, लाखों में हजारों में है मेरा महबूब। मजा आ गया गाने को सुनकर। अमीना खान जी लेते हैं कि लिखते कि हर दुखी इंसान आशिक नहीं होता, और हो सकता है कि कोई उसकी उसकी चाय भी पी गया। ऐसा हो सकता है। अनिल का शब्द लिखते हैं कि धीरे धीरे आप मेरे दिल के मेहमान हो गए, मस्त गाना लगा है अहमद सर जी, बहुत बहुत बहुत मजा आया, थैंक यू सो मच। और उनके बाद यहाँ पे बाबूलाल जी लिखते हैं कि दिगंबर जी के पसंद मुझे बहुत पसंद आई है, थैंक यू सो मच। और नाहिद जी लिखते हैं कि दिल की किताब में गुलाब उनका था, रात की नींद में ख्वाब उनका था, और कितना प्यार करते हो जब हमने पूछा मर जाएंगे तुम्हारे बिना, ये जवाब उनका था, है क्या बात है। राधा कदम लिखते हैं कि अरुण मन्ना जी का गाना मुझे बहुत ही पसंद आया है, और राधा कृष्ण को लिखते हैं कि मुझे ये गाना बहुत पसंद आया, थैंक यू सो मच। ये फीडबैक सुन लेते हैं
1: जी। ये भी गाना बहुत लाजवाब है, लाखों में हजारों में है मेरा महबूब, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।
0: ओके जी, और यहाँ पे अनिल मेहता लिखते हैं सुपर हिट फरमाइश, मजा आ गया इस गाने को सुनकर, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और यहाँ पे बीकप्पा जी लिखते हैं कि सर जी लाखों में हजारों में है मेरा महबूब, बहुत ही प्यारा फरमाइश है। ओके, और इसी बात पर अगली जो डिमांड है हमारे ज्योति खटवड़े जी का है, जो मुझे बहुत पसंद है, थैंक यू ज्योति जी, इतना प्यारा गाना आपने मेरे लिए लेकर आया, थैंक यू सो मच, एंजॉय द ट्रैक जो मुझे बेहद पसंद है। और सच में जब तक रहेगा सीने में दिल, सिर्फ तुम्हें ही चाहूंगा, सिर्फ तुम्हें ही चाहूंगा, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ही चाहूंगा।

और इसी बात पर मुझे एक और गाना याद आ रहा है जो मुझे बेहद पसंद है। इस गाने को अगर ना प्ले किया जाए तो सच में मजा नहीं आएगा। थोड़ा सा गाना इंजॉय कीजिए कि कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करता हूँ।

0: बिल्कुल, कौन तुझे यूँ प्यार करेगा, जैसे मैं करता हूँ वैसे फीडबैक भी मेरे पास बहुत सारे आ चुके हैं और शामिल करता हूँ बहुत सारे फीडबैक आए हुए हैं। नाही जी लिखती है कि तुम्हारी यादों की खुशबू इन हवाओं में है, लिखते कि तुम्हारी यादों की खुशबू इन हवाओं में है और तुम्हारी ही अक्स मेरी इन निगाहों में है। धड़कने तो कब की मैंने सौंप दिया है तुम्हें, अब तो बस मेरी ये जान तुम्हारी बाहों में है। आए हाय क्या बात है नाही जी, छा गई तुझ। ओके जी, और इसी बात यहाँ पे नंदलाल जी लिखते हैं कि दिगंबर जी का गाना मुझे बहुत पसंद आया, थैंक यू दिगंबर जी। और यहाँ पे शिल्पा बेन जी लिखते हैं कि ये गाना मैं पहली बार सुना हूँ, मुझे बहुत पसंद आया, थैंक यू सो मच। और बीकपन जी लिखते हैं कि बेहतरीन फरमाइश सिर्फ तुम्हें ही चाहूंगा। ज्योति खटवड़े जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। एंड प्रमोद कुमार जी लिखते हैं कि बहुत ही बेहतरीन फरमाइश है, थैंक यू सो मच ज्योति जी। और ज्योति जी लिखते हैं कि अमन जी फाइनली मेरा सॉन्ग सुनाने के लिए धन्यवाद करती हूँ, ओके बहुत बहुत वेलकम है आपका भी। फिलहाल अरुण मंडल जी लिखते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद अमन जी, आपने मेरा गाना प्ले कर दिया। दोस्तों को भी धन्यवाद फीडबैक देने के लिए। और सर्वजीत सेठी जी क्या कहते हैं, सॉरी सर्वेश भगत जी।
1: जय अमन सर जी।
0: जी जी,
1: सभी भाई और सभी बहन अपने अपने गाने में शामिल करते, सभी को धन्यवाद देते हैं जी।
0: ओके जी,
1: थैंक यू सर,
0: वेलकम जी। और मैं बता दूं कि मीना जी लिखते हैं बहुत ही प्यारी आवाज है जी, बिल्कुल। और यहाँ पे बाबूलाल जी लिखते हैं कि अमन जी थैंक यू सो मच। अच्छा जी, ओके। और यहाँ पे साहिब हुसैन जी लिखते हैं कि ये लव सॉन्ग बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच, जब तक रहेगा सीने में दिल सिर्फ तुम्हें ही चाहूंगा, ये फीडबैक
2: जी। बहुत प्यारा नगमा है ये, जब तक रहेगा सीने में दिल सिर्फ तुम्हें ही चाहूंगा, तो आप चाहते रहिए और हम सबका दिल रेडियो हॉट स्टार पर बहलाते रहिए जो दीवाना बना दे।
0: धन्यवाद,
2: बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद MD फैज आलम मोहियुद्दीन नगर से।
0: धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अकबर खान जी लिखते हैं कि इस गाने में मजा आ गया, क्योंकि इस गाने में आप भी गुनगुना रहे हैं और इसी तरह से गुनगुनाते रहिए तो बहुत अच्छा लगता है आपकी आवाज़, थैंक यू सो मच सर जी। लेकिन आप भी कम नहीं है, आप तो छुपा रुस्तम निकले ना। और यहाँ पे अनिल कश्यप जी लिखते हैं कि जब तक रहेगा सीने में दिल बहुत ही प्यारा गाना, थैंक यू सो मच। नीलेश विरोकार जी लिखते हैं कि सिर्फ तुम्हें ही चाहूंगा वाला गाना मुझे बहुत ही पसंद आया है। और शिल्पा बेन जी लिखते हैं कि ये कौन तुझे यूँ प्यार करेगा, ये तो मेरा भी फेवरेट गाना है, ओके थैंक यू सो मच। इसी बात पर अगला जो डिमांड है वो मैं बिट्टू कुमार जी का प्ले करने वाला हूँ। बिट्टू कुमार जी ये गाना बहुत ही प्यारा है, सुनवा दिया, इंजॉय कीजिए बिट्टू कुमार जी।

0: बिल्कुल इन लग जाओ गले मेरे यारा और मेरे दिल से मेरा हाल पूछो। आई मिस यू सो मच। एंड यहाँ पे दाता करम लिखते हैं कि बिट्टू जी का गाना मुझे बहुत पसंद है, थैंक यू सो मच। एंड नीलेश विकास जी लिखते हैं कि थैंक यू सो मच। और यहाँ पे बिट्टू कुमार लिखते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद अमन जी मेरा गाना प्ले करने के लिए। और नाहिद जी लिखते हैं कि कभी दो लिखते हैं कि कभी जो याद आऊं तो थोड़ा प्यार कर लेना, मैं दिल की हर एक धड़कन कर अपने धड़कन पर एतबार कर लेना, और तुमसे जो दूर हूँ वो ये मत समझना कि मैं मिलने तक तुमसे इंतजार कर लेना। अच्छा कोई बात नहीं, इंतजार ही इंतजार है। और यहाँ पे ये सुनते हैं क्या कहते हैं।
1: वाह क्या गाना पसंद किया है बिट्टू कुमार जी। लग जाओ गले मेरे जानम, बहुत बहुत दिल खुश हो गया भाईजान, बहुत धन्यवाद आपका। MD फैज आलम मोहिउद्दीन नगर
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपको भी। और शिल्पा बेन जी लिखते हैं कि बैकग्राउंड में जो म्यूजिक चल रहा है वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच। राधा कृष्ण गोपी लिखते हैं कि बहुत ही लाजवाब गाना, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। बिट्टू जी नंदलाल जी लिखते हैं कि बिट्टू जी का गाना मुझे बहुत पसंद है, थैंक यू बिट्टू जी, इसीलिए थोड़ा सा गाना सुनते हैं।

बिल्कुल, मेरा हाल पूछो यार, पूछो कि मैं कैसा हूँ। लेकिन अगला जो डिमांड है वो शाहिद अंसारी जी का है। शाहिद अंसारी जी बहुत खुश होते नगमा लेके आते हैं और सुनवाते हैं। इंजॉय कीजिए शाहिद अंसारी जी।

0: और शाहिद जी आप भी बन गए हैं आज के सॉन्ग विनर, क्योंकि आपका भी गाना मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि आप गाना लाते ही ऐसा पता नहीं कहाँ कहाँ से ढूंढ के लाते हैं कि भाई आप विनर बन जाते हैं, हमारे प्रमोद जी विनर बन जाते हैं और भी दोस्त बन जाते हैं, थैंक यू सो मच। वैसे और फीडबैक भी आए हुए मेरे पास बहुत सारे। अनिल कश्यप जी लिखते हैं कि ये कुमार सानू जी का बेस्ट गाना जी, बहुत अच्छा। और अमीना खान जी लिखते हैं बात ओके। और यहाँ पे मुझे बता दीजिए, यानी कि प्रमोद कुमार लिखते हैं कि शाहिद जी के पसंद मुझे बहुत पसंद है, ये बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बाबूलाल जी लिखते हैं कि शाहिद जी के पसंद मुझे बहुत पसंद है, थैंक यू सो मच। एंड यहाँ कुंता जी लिखते हैं कि मैं भी जुड़ गई, बहुत बहुत वेलकम है कुंता जी। ये क्या कहते हैं, इनकी सुन लेते हैं।
1: शाहिद जी की भी पसंद खूबसूरत है, अच्छा लगा, दिल को सुकून मिला, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मोहम्मद फैज आलम मुहिद्दीन नगर।
0: ओके, तो इसी बात पर सुनते हैं अनिल कश्यप जी का गाना जो डेडिकेट किया है आरजे सोनी जी को और मुझे। थैंक यू सो मच अनिल कश्यप जी, एंजॉय द ट्रैक चोरी किया रे।

वेलकम बैक। और मेरे पास बहुत सारे फीडबैक आए हुए हैं और यहाँ पे मीना जी देखते हैं, बहुत ही प्यारा नगमा है। थैंक यू सो मच अनिल जी। और यहाँ साहिब हुसैन जी देखते हैं कि ओके ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ भाई। नाहिद जी कि तुमसे मिलकर ये दिल कुछ और बहक जाता है और तुम्हारी खुशबू में हर लम्हा महक जाता है, और कुछ तो जादू है तुम्हारी इन नजरों में कि तुम्हें देखते ही मेरा हर लव ठहर जाता है। जी बिल्कुल। और शाहिद जी देते हैं थैंक यू सो मच अमन जी मेरा गाना प्ले करने के लिए एंड विनर बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दोस्तों का भी धन्यवाद फीडबैक देने के लिए। अनिल कश्यप जी लिखते कि कॉलेज टाइम याद आ गया, थैंक यू सो मच अमन जी गाना सुनाने के लिए। और अमीना खान जी लिखते हैं कि ओके। और फिलहाल अगला जो मैं गाना प्ले करने वाला हूँ और वो गाना है यहाँ पे सुनीता गोप जी का। तो सुनीता गोप जी एंजॉय द ट्रैक।

0: वेलकम बैक। और यहाँ पे शिल्पा बहन जी लिखते हैं कि ये चोरी के वाला गाना मुझे बहुत अच्छा लगा, सोनू निगम की आवाज में बहुत अच्छी ये पसंद थी और प्रोग्राम तो बहुत ही शानदार चल रहा है, थैंक यू सो मच। और अनिल कश्यप जी लिखते हैं कि ये बरसात में रिमझिम गीत और सुपर चॉइस लगी, थैंक यू सो मच। और यहाँ पे राधा कृष्ण को लिखते हैं श्रीमती जी की पसंद मुझे बहुत पसंद आई है, अच्छा लगा। बीटू कुमार लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है जी, बिल्कुल इसी बात पर मैं सुनवाता हूँ अगले पसंद। और ये पसंद हमारे किस दोस्त की है जरा सा देख लेता हूँ मैं,
1: छुपा लूं इस रात में,
0: ये पसंद है हमारे यानी कि शिवम जी की। और शिवम जी एंजॉय द ट्रैक।

0: ओके जी, अगला जो डिमांड है मैं बिना देर के वे में चलता हूँ हीरामन जी के पास, पर हीरामन जी का गाना सुन के आते हैं, फिर हम आगे यहाँ पे फीडबैक के पास चलेंगे।
1: नमस्कार आरजे अमन सर जी, गुड इवनिंग।
0: गुड इवनिंग,
1: मैं हीरामन खिराड़े वाशिम महाराष्ट्र से। आज न्यू सॉन्ग स्पेशल में मुझे भी एक गीत सुनना है और गीत के बोल है, तेरे दिन नहीं लगता दिल मेरे ढोलना, ये गीत सुनना है सर। और इस गीत में पहले तो आरजे अमन सर जी आप ये गीत सुनेंगे और आपकी सुंदरता की मूर्त कुछ मेरे प्यारे मित्र है, जैसे कि अनंत कुलकर्णी जी, अमोल कांबड़े जी, मिसाल अंगद जी, रवि मोहाड़े जी, फुले भक्त संजय भाऊ जी, गजानन सालोकार जी, संतोष यश काले जी, रवि मोहाड़े जी, रोहित कुमार जी, इलियास कुरेशी जी और प्रमिलाताई बार बोले। इन सभी रेडियो हॉटस्टार सुनने वाले दीवाने और दीवानों के साथ ये गीत सुनना चाहूँगा। ओके, धन्यवाद।

बिल्कुल वो ढोलना, गाने तो बहुत सारे हैं लेकिन फिलहाल देखते हैं कितना प्ले हो पाते हैं। मीना जी लेते हैं, वाह बहुत ही बेहतरीन फरमाइश, थैंक यू सो मच फॉर दिस सॉन्ग। एंड यहाँ पे कपूर चंद जी जुड़े हैं, नहीं अभी तो आपका गाना नहीं प्ले हो पाएगा, उसके लिए हम सॉरी। अनिल मेहता जी लेते हैं कि कोशिश करेंगे अनिल मेहता जी, लेकिन शायद हो सकता है कि आपका भी प्ले ना हो पाए। और मीना खान जी लेते हैं कि झिंगट वगैरह, अच्छा झिंगट मतलब उस दिन आपने मुझे कुछ बताया था, झिंगट मतलब शायद अच्छा होता है ना। बाबूलाल जी लिखते हैं कि हीरामा जी के पसंद मुझे बहुत पसंद आई, थैंक यू सो मच। और राधाकृष्ण को भी लिखते हैं कि बहुत ही खूबसूरत गाना है, मुझे बहुत पसंद है, थैंक यू सो मच। इसी बात पर अगला जो डिमांड है वो मैं ले चलता हूँ आपको सुनवाने, यानी प्रमोद जी के पसंद है। प्रमोद कुमार जी, इंजॉय द ट्रैक।

बिल्कुल कह दीजिए कह दीजिए कह दीजिए। वैसे मेरे पास बहुत सारे गाने की फरमाइशें भी छूटने वाली है, लेकिन मैं क्या करूँ, अगर अगर किसी का गाना मैं कम प्ले करता हूँ तो ये भी कंप्लेंट आती है कि गाना एक ही मिनट का बजा दिया आपने। मैं क्या करूँ यार, किसी में चैन नहीं होता, इसीलिए मुझे गाना थोड़ा सा ज्यादा करके मतलब यानी कि प्ले करना पड़ता है। लेकिन अगला जो गाना प्ले करने वाला हूँ वो नाहिद अंसारी जी का है। अच्छा, मेरे पास फीडबैक दिया हुआ है, लेकिन मैं फीडबैक बाद में शामिल करूंगा। नाहिद जी का गाना मैं प्ले कर रहा हूँ। नाहिद जी लिखती है कि अल्लाह करे दिल ना लगे किसी से, अच्छा लगता है कि इनका दिल किसी से लग गया है। अरे है क्या बात है।

बिल्कुल अल्लाह करे दिल ना लगे किसी से, जब दिल लगता है तो क्या ही कहें, बहुत बेकरारी होती है, बहुत बेचैनी होती है, दिल किसी काम में लगता ही नहीं है, बस मन करता है कि बस उनसे थोड़ी सी बातें कर लूँ, थोड़ा उनको मैं देख लूँ, थोड़ी उनकी आवाजें सुन लूँ, क्या करूँ यार, दिल है कि मानता नहीं। इसी बात पे अगला गाना मैं प्ले करने वाला हूँ दत्ता करम जी की फरमाइश, दिल है कि मानता नहीं। इंजॉय कीजिए इस गाने को दत्ता करम जी।

बिल्कुल दिल है कि मानता नहीं है। और यहाँ पे यानी कि प्रमोद कुमार जी लिखते हैं कि आप अपनी पसंद से कोई भी गाना बजा दीजिए। बिल्कुल, तो आप आज के ये विनर हुए हैं, तो ये गाना मुझे दिख रहा है, यही गाना मैं प्ले कर रहा हूँ, इंजॉय कीजिए।

और भाई अजय कुछ जी आपका गाना, क्योंकि आपने गाना भेजा था ओल्ड इज गोल्ड वाला गाना भेजा था इसलिए आपका गाना प्ले नहीं हो पाएगा, उसके लिए सॉरी। और कुछ फीडबैक मैं अभी शामिल कर लेता हूँ इस गाने के बाद।

चाहे जो भी ले ले, लेकिन थोड़ा सा प्यार दे दो प्लीज, मुझे बहुत प्यार की जरूरत है, बहुत बहुत बहुत प्यार की जरूरत है। वैसे फीडबैक भी बहुत सारे आए हुए हैं। राधा किशन को भी लिखते हैं कि मुझे गाना सभी पसंद है, दिल खुश करने वाले गाने हैं। और मीना जी लिखते हैं कि वाओ ऑसम फरमाइश, बेमिसाल फरमाइश, थैंक यू सो मच इस गाने के लिए भी। एंड प्रमोद जी लिखते हैं कि थैंक यू सो मच मेरा भी गाना प्ले करने के लिए। दोस्तों का भी धन्यवाद फीडबैक देने के लिए। नंदिनी मां लिखते हैं कि आज के सभी गाने बहुत ही प्यारे प्यारे, एक से बढ़कर एक हैं। और राहित जी लिखते हैं कि थैंक यू सो मच मेरा भी गाना प्ले करने के लिए। और साथ ही साथ यहाँ पे शिल्पा बेन जी लिखते हैं कि आज के सभी गाने मुझे बहुत पसंद है और दिल है कि मानता नहीं वाला गाना मुझे बहुत अच्छा लगा। बाबूलाल जी लिखते हैं कि आज के सभी अच्छे कार्यक्रम भी बहुत ही शानदार लगा है, सभी दोस्तों का पसंद बहुत बहुत सुपर हिट लगा है। और कपूरचंद जी लिखते हैं कि सुपर सॉन्ग है। और यहाँ पे नितिन सक्सेना जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है नितिन सक्सेना जी। इसी बात पर अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ वो हमारे पास आए हुए है, यानी नंदू कुमार जी का, यानी कि जालवी महाराज से। भाई नंदू कुमार जी, एंजॉय द ट्रैक टिप टिप बरसा पानी।

बिल्कुल, मैं अगला गाना प्ले करूंगा भाई, और क्या करूं फिलहाल। यहाँ पे अगला जो गाना मैं प्ले करने वाला हूँ वो दो दोस्तों की पसंद है, अजय भगत जी और एक और भगत जी है, जरा नाम में मुझे कन्फर्म करना पड़ा, अजय भगत जी और मयंक भगत जी, दोनों की एक ही पसंद है, आज मिले हो कल फिर मिलना। बिल्कुल भाई, आज मिले हो कल फिर, आज सुने हैं, और यानी कि कल

इसी बात पर मैं तीन दोस्तों का गाना प्ले करने जा रहा हूँ, मोहन नेवारे, मंगेश देशमुख जी और राजमल हिवराले जी। इंजॉय कीजिए, मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना, क्योंकि वादा तो टूट जाता है कि नहीं?

बिल्कुल सपना टूट जाता है भाई, क्या करें। और गाना भी बहुत ही प्यारा है, लेकिन क्या करें, इतने दोस्तों के फीडबैक भी आए हुए हैं, मैं क्या ही बताऊं। क्या कुत्ता भी नीचे लिखते हैं कि अमन जी आज क्या, आज मैंने कोई फरमाइश नहीं भेजी थी, लेकिन अच्छा आपके बेटे के यानी बर्थडे है, तो उनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और वो जी हजारों साल। ओके, और आप कहती तो उनके लिए मैं यानी कि पोस्टर बना देता। ओके, बाबूलाल लिखते हैं कि अमन जी आपका भी गाना इसलिए नहीं पिला क्योंकि आपने 1988 का भेज दिया था, इसलिए आपका गाना नहीं पिला होगा।

0: बिल्कुल टूट जाता है अनिल कश्यप जी। नहीं देखिए अब बारिश आएगा अमन जी, दिक्कत ना हो जी। अब तो क्या कहें, रोज पैसे भीगने के आए थे, लेकिन अभी मौसम ठीक है, अभी बारिश नहीं हो रही है, बिल्कुल नहीं हो रही है। और अकबर खान लिखते हैं कि जी बिल्कुल अभी आने ही वाला है, इस गाने के बाद आप ही का गाना आने वाला है अकबर जी। अनिल जी लिखते हैं कि बहुत अच्छा लगा, गाना सुनने को मिला, मजा आ गया सुन के। और कपूर चंद जी के सभी गाने सुपर टूपर सुपर हिट चल रहे हैं। राधा कृष्ण को लिखते हैं कि बहुत ही शानदार गाना, इस गाने को जब भी सुनता हूँ दिल धड़क उठता है। तो अब जाहिर सी बात है कि अब ये मिलने अकबर खान जा रहे हैं, उनके रास्ते में घर है, तो घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उनका घर। ये दो दोस्तों की पसंद है, हमारे अकबर खान जी का भी है और यही पसंद यानी कि परवेश कुमार जी का है, दोनों दोस्तों की पसंद। इंजॉय कीजिए।
1: है

बिल्कुल जाएंगे भाई, क्या करेंगे, जाना ही पड़ेगा, अपने घर तो जाना ही पड़ेगा अभी ना, लेकिन एक दो गाना प्ले करने के बाद जाऊंगा मैं। और इसमें ये जो लाइन है ना, इस लाइन के लिए मैं इंतजार कर रहा था इस गाने का।

बिल्कुल, मुझे भी बस इतना ही तुमसे कहना कि भुला यानी भुला ना सकोगे मुझे भूल कर की। और ये गाना लेके आई हुई है इन संध्या पटेल जी, इंजॉय कीजिए। और इसके बाद से मैं कॉल लगाऊंगा एमडी नाजिम जी को।

0: तो कॉल लगाते हैं सीधे हमारे एमडी नाजिम जी को, जो आज के यानी कि टॉप लीडर विनर बने हैं। बहुत बहुत बधाई हो आपको। एमडी नाजिम जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो, आज के टॉप लीडर बोर्ड में अपना स्थान भी पाया है, लेकिन यानी कि जो मैंने लॉटरी निकाला उसमें आपका नाम आया, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो।
1: धन्यवाद।
0: ओके, तो आज क्या सुनना पसंद करेंगे और कुछ कहना चाहेंगे आप?
1: नहीं, क्या बोलेंगे
0: कुछ नहीं बोल पाते हैं, है ना? अरे कुछ भी बोल सकते हैं, अरे कम से कम हमारे प्रोग्राम की तारीफें कर सकते हैं।
1: प्रोग्राम तो जबरदस्त है।
0: थैंक यू सो मच।
1: लिख रहे हैं जी? प्रोग्राम तो जबरदस्त है, इसलिए तो लेटर लिख रहा डेली हम।
0: अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आपके लेटर के लिए। तो आज क्या सुनना पसंद करेंगे बता दीजिए।
1: एक मूवी है बंतीस करके, इसका गाने का बोल है, मैंने अपना दिल दे दिया इस पागल दीवाने को।
0: मैंने अपना दिल दे दिया, ओके। तो मैंने आपको गाना सुनवा भी दिया, एंजॉय कीजिए। और इसी गाने के साथ आप मुझे दीजिए प्रोग्राम से निकलने की इजाजत। मिलते हैं फिर कल शाम 6:30 बजे, तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब खैर, बाय बाय।

0: हम पर शक ना लाओ, अब जो मिलना।
1: अच्छा जी,
0: अब जो मिलना बांध के सहरा ही मिलना सरकार।
1: तो अगले इतवार
0: जी सरकार।
2: याली।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 12 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 12 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 1 बज रहा है। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 1 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

0: लड़ेगा।
1: देखो जिधर में शोले ही शोले, दिल है आखिर कैसे न डोले। हाय देखो जिधर में शोले ही शोले,

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 2 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 2 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 3 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 3 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

0: रोजी, ए रोजी, रोजी पहले क्रिसमस में तो सबसे पहले आ जाया करती थी, मगर कुछ दिनों से लगता है तुझे कुछ हो गया है। कहीं किसी से लव वव तो नहीं हो गया?
1: क्या?
0: ओफो, लव यानी प्यार, मोहब्बत।
2: वो होने से क्या होता है?
0: जब मुझे हुआ था तो
1: तो
0: मुझे नींद नहीं आती थी,
2: मुझे भी नहीं आती,
0: मुझे भूख नहीं लगती थी,
2: मुझे तो प्यास भी नहीं लगती,
0: दिल में दर्द होता था।
2: दर्द तो मुझे भी रहता है।
0: बस यानी कि तू गई काम से।
2: क्या?
0: ओफो, यानी कि तुझे प्यार का रोग लग गया है और इस रोग की बस एक ही दवा है, वो
2: वो क्या?
0: ये कि जिससे प्यार हुआ है अगर वो दिल पे हाथ रख दे तो दर्द मिट जाएगा। मारिया, रोजी, ए रोजी, ओ गॉड,
3: क्या हुआ यो-यो?
0: देखो ना क्या हो गया है अपनी रोजी को।
3: ये रोजी तो हर रोज कोई ना कोई नाटक करती है।
0: नहीं, ये नाटक नहीं है, ये तो बेचारी सचमुच बेहोश हो गई है। कोई दवा दारू करो ना इस बेचारी का।
3: ये जो दौरा है ना, ये मिर्गी का है और इसका इलाज सिर्फ जूता सूंघा। देखा, जूते का नाम लिया और दौरा गायब।
1: बाय गॉड, आज क्रिसमस का दिन है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, ये दौरा मिर्गी का नहीं है।
3: देख यो यो, तूने बुलाया और मैं चला आया। यारों का टाइम मत बर्बाद कर, सच सच बोल, तुझे कष्ट क्या है?
4: मुझे दर्द रहता है, दिल में दर्द रहता है,
5: अच्छा,
4: मुझे भूख नहीं लगती, मुझे प्यास नहीं लगती।
5: बाप रे।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 4 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 4 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

0: गगन को डोर समझ रहा है? नादान, मौत आई है तेरी।
1: मौत? इतनी हसीन, अये ये नागन डसले तो क्या कहना।